0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए म चाहिँ

0: trust us. Reliable Agro Nepal Public Limited का प्रीमियम उत्पादन है। शांति र विकास को आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: यति बेला मध्याह्नको 12 बज्यो।

0: तपाईको गाउँ शहरमा हुन गइरहेका तीजसँग सम्बन्धित प्रतियोगिता तथा कार्यक्रमहरू टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालबाट विश्वभर प्रसारण गर्न सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजलाई सम्झनुहोस्।
1: सम्पर्कका लागि सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बागडिङ्गा नगरपालिका 4 गजेहेडा कपिल वस्तु, फोन नम्बर 98570-51181, 98570-50757, 98470-12919।
2: नमस्कार, आप इतना घड़ी सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज के संगरी रहल जाइत बा। इस समय हो थारू गीत संगीत के, आप इस समय में थारू गीत संगीत सुन सकल जाई।

0: காதல்கள் தியா எமர்சாலின் மையா லகைத்து
1: जिसके तो मैं पता बा
0: पता बा तो चोलो जाए ना चेहरा लसुन ससुन पने ना काम छोरो
1: मैं लास लगता मैंने जेठू ना चेहरा
0: जाई
1: मैंने जेठू का
0: चोलो जाई का
1: जाई ना होता
0: जाई
1: चोलो तो जाई।

0: ना बने प्रेम के लड़ाई में कुछ हो जाए गलत से अपन सचमुच जोखिम तू ही भरना करे बू
1: अकेली रात भर कर फिरती फिरती केवल

0: आपके जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: अम्मा, पापा को ये फोन खिलाना था।

0: ओहो, देखा जाए ना मूस कुदस है।
1: ओहे तो बरसात के समय है, बखार के आना खुले है कि मूस आए तो अब मूस हेरत सपबो आई सकत है।
0: ओहो हाँ, तो सही है, याद हुई गवा। घर के आसपास झाल झुंगा बढ़ के बहुत बड़ा हुई गवा है, काटे रहा।
1: हाँ ऐसा करा जाए, तब काल सवेरे पूरी तरकारी नाश्ता करा जाए और सब परिवार मिलकर सर सफाई करे के हुई और आसपास के फोहर व्यवस्थापन करे के हुई ना।
0: होत है होत है, ऐसा समय पर तो बड़बार घास फुहर गंदगी रहा जगह पर सांप लुकाई के बैठा हो सकत है ना।
1: वही से तो कही थे बिटिया समीरा, बेटवा विवेक, तोहरे सब और हम मिलकर घर के आसपास रहा बड़वार घास काट दिया जाए, काल लाएगा जलावन घरे से कुछ दूर व्यवस्थापन कर दिया जाए, डेहरी के आना सांप मूस न हले के में से मरम्मत कर दिया जाए और घर के आसपास खाली और साफ होए के बाद सांप आवे के अपने कम हो जाए न।
0: हाँ काल संचरो हुए सवेरे सब फुर्सते में हो जाते है।
2: सांप बरसात के समय में सूखा जगह पर रहत पसंद करते हैं। यह मौसम में अपने वास स्थान पर पानी चल जाए नाते सूखा जगह के खोजी में वो लोग बाहर निकलते हैं।
3: मूस मुर्गी जैस चारा के खोजी कार्यक्रम में सांप मानव बस्ती नेरे आ सकते हैं।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाते है।
4: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: हे भगवान, यो टोयलेट भरेर पानी पनि माथि आउनलाइसके, कति झन्झट भएको, कला बोलाउने होला।
6: ए दाइ ढुकाउनुहोस्, यस्तो बेला त अनुप किसान सेनेटरी बोलाउने हो, पाँच मिनटमै आउँछन्, सेफ्टी ट्याङ्की र रिङ सफा गरेर गइहाल्छन्।
7: हजुर, टोयलेट सफा गराउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी पाँच मिनटमै टोयलेटको सेफ्टी ट्याङ्की र रिङ खाली गर्नेछौ।
8: अनि सुन्नुहोस् त, हामी कहाँ निर्माण कार्यका लागि चाहिने गिट्टी र ढुङ्गा पाइनुका साथै निर्माण कार्यका लागि चाहिने सिँचाइको सुविधा पनि रहेको छ है।
6: सम्पर्क अनुप किसान सेनेटरी, बाढगंगा एक मन्द्रेली टोल, बठनपुर कपिल वस्तु,
8: प्रोप्राइटर नोने थारू।
7: सम्पर्क नम्बर 98144950750 र 98 3173।

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

0: आपकी जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: आमाले मीठो
2: खाना दिनुहुन्छ
1: अनि बाबाले

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: अब जाए के घर के देवाल लिपोती के उराए लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उराए लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: होते अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे, अम्मा हमें सांप दस लीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दस लीस बिटिया?
2: यही दही दे, हाथ में दस लीस अम्मा।
1: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमरे मुस्कान बिटिया का सांप दस लीस। अरे क्यों है, क्यों है?
3: अरे का हुई गवा, का हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप दस लीस की काओ।
3: ना घबराओ जाए काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कह जाए के मेर से, और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और सांप दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की।

0: का कि नहीं सांप डस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए और कुछ नहीं खियावे चाहिए पनियों नहीं बुझा गए ना
1: तब तो गह मोहरा लाई के सपुआ डसी ली है जगह पर लगाई दे तो बाबू
0: वो नहीं काकी घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए बुझा गए ना
1: बुझेन बाबू बुझेन
0: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये कहा जाए तब तक हमरिन के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़ता है हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है हाँ डाटा हम कैसे देखे पड़ा हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा हमरिन के गाँव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए
0: काकी अब मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए मिला तो मुस्कान का बचाए सका जाता है
1: जी हो थे बाबू चलो
2: याद रखा जाए सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए या कौनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए
3: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है संभव होए तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है
2: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचा सका जाता है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाई के आवश्यक जानकारी ले सका जात है
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
1: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।